कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक ओसी पी सच डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राख हो प्रभु नानक दे कर हथ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन ना साको

हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत सार बिखै बिख खाही माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास मिटाई।

परम पै पूले सुतदारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की।

अनमद लंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुनवते हर नाम ना बीजियो अगे पुखा क्या खाए।